0: जा रही हो?
1: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
0: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
1: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
0: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
2: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
3: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
3: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
5: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
6: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
7: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
5: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आंखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: 7 8 5 9 8 00 00 या फिर 8 7 4 0 00 01 44 पर।
1: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari. MLP International School, Rajpura, Rewari. MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा एमएलपी एंस जैसा। एमएलपी नाम ही काफी है।
2: जब बात हो आईआईटी या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
3: आप सोच रहे होंगे कि सीएनजी पंप पर इतनी खुशी क्यों?
4: बात यह है, सीएनजी अब गांव, शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे,
3: इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी सीएनजी ही डलता है
5: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
3: बोल ललंकार। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
7: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
6: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन, यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, मल्टी स्पेशलिटी, सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
8: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
8: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
8: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
8: जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
10: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MRI TCS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
11: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
10: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
11: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
7: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
8: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
7: गुरुग्राम? इतनी दूर?
8: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
7: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
8: मतलब?
7: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
8: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
7: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, A ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
9: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
10: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
11: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
12: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
13: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक।

0: के साथ प्लस ट्रॉली बैग, जीरो डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो Realme ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
3: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
4: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
5: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस अपोजिट अंबेडकर पार्क धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
7: बोलिए मुझे जीजा जी।
8: क्या जी?
7: क्या आपने लगाई PNG?
8: हाँ जी।
7: क्यों जी?
8: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
7: और सेफ्टी
8: की चिंता स्टॉप,
7: और गैस खत्म हुई तो
8: ये टेंशन भी स्टॉप।
7: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
8: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
7: हाँ जी
8: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
7: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
8: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
7: बिल्कुल सही।
8: तो आप भी अपनाओ PNG
7: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
9: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
10: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
9: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
10: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं।

0: रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटो मोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
2: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
3: अरे इसमें क्या है?
2: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
3: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
4: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
3: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
2: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
3: इनका एड्रेस क्या है?
2: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari; MLP International School, Rajpura Rewari; MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा एमएलपीएंस जैसा। एमएलपी नाम ही काफी है।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
2: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल, नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: Ready to unlock your child's brilliance at MLP Group of Schools. We offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara Rajasthan. Sunhere Bhavi के लिए कोई नहीं ऐसा MLPians जैसा, MLP नाम ही काफी है।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
5: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
3: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
5: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
6: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
7: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
6: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
2: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
3: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
2: अच्छा, कौन सा?
3: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
4: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी, मटीला भिवाड़ी में भी है।
0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
5: अरे भाई, क्या हुआ?

0: हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेस, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
1: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चलें?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
4: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है। एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
5: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 अनदर ब्रांच।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
10: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
11: अरे कहाँ जा रही हो?
12: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
11: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
12: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
11: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
13: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
14: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर पॉपुलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
15: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
14: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 और 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
16: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
17: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
18: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
16: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
19: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं, सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
3: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
4: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
3: बोल लल्लनकॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
5: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
6: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
7: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01493493322 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSE. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere Bhav भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLPians जैसा। MLP नाम ही काफी है।
5: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
6: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
7: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन, यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
9: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, मल्टी स्पेशलिटी, सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
10: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
11: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
12: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
11: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
12: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
11: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
13: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
11: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
13: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
11: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
13: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
11: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं। साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
1: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान नाक गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
4: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 अनदर ब्रांच।
5: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
6: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
7: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
8: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी,
9: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
10: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
11: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
12: बोलिए मुझे जीजा जी।
13: क्या जी?
12: क्या आपने लगाई PNG?
13: हाँ जी।
12: क्यों जी?
13: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
12: और सेफ्टी
13: की चिंता स्टॉप,
12: और गैस खत्म हुई तो
13: ये टेंशन भी स्टॉप।
12: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
13: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
12: हाँ जी
13: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
12: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
13: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
12: बिल्कुल सही,
13: तो आप भी अपनाओ PNG
12: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
14: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
15: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं, और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
14: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
15: अरे नहीं, एके ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, एएमसी, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
14: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी एके ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
16: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
17: अरे इसमें क्या है?
16: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
17: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
16: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
17: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
16: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
17: इनका एड्रेस क्या है?
16: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
18: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियम

0: समय ओपीडी सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चले?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
6: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
7: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
8: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
1: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लास रूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
8: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
9: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
10: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
11: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
10: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
11: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600। भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
2: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
2: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा। यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: राहुल यार मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: पापा दांत में दर्द हो रहा है।
6: बेटा इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
7: अरे क्या आपको पता नहीं है अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है?
6: अच्छा कौन सा?
7: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3 कोनाक OSS सोसाइटी जेनेसिस मॉल के पास अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
2: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
8: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
9: अरे भाई क्या हुआ?
10: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
9: अरे भाई और कहीं क्यों जाना जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफ टॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
10: कॉल करें 9257036191।
11: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी 9887066308।
12: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
13: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी लोगों के लिए या
12: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: Ready to unlock your child's brilliance at MLP Group of Schools? We offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara Rajasthan. Sunhere Bhavi भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLPians जैसा, MLP नाम ही काफी है।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
6: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
7: अरे कहाँ जा रही हो?
8: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
7: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
8: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
7: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब ओब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी टीपीए के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
10: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D सीटी स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 और 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
12: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
13: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
14: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
15: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
4: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
5: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
4: बोल लालंकार। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
7: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
6: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन, यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
3: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
4: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
5: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
6: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
5: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
6: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
5: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
5: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
7: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
5: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
7: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
5: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-93222 या फिर 9034-96-9731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है। एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
3: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच M2।
4: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer

0: a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSE. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari. MLP International School, Rajpura, Rewari. MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere bhavishya ke liye koi nahi aisa. MLP jaisa. MLP naam hi kaafi hai.
1: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
2: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
3: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
2: गुरुग्राम? इतनी दूर?
3: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
2: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
3: मतलब?
2: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
3: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
2: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
4: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
5: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
6: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
2: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
3: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
3: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
3: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
6: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
7: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
8: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
9: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
10: बोलिए मुझे जीजा जी।
11: क्या जी?
10: क्या आपने लगाई PNG?
11: हाँ जी।
10: क्यों जी?
11: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
10: और सेफ्टी
11: की चिंता स्टॉप,
10: और गैस खत्म हुई तो
11: ये टेंशन भी स्टॉप,
10: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
11: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
10: हाँ जी
11: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
10: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
11: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
10: बिल्कुल सही।
11: तो आप भी अपनाओ PNG
10: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
12: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो। अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
13: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
12: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
13: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
14: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
15: अरे इसमें क्या है?
14: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
15: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
14: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
15: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
14: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
15: इनका एड्रेस क्या है?
14: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
1: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
2: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
6: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
6: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
7: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन्मय ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ

0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
0: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
2: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
1: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
2: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
1: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
0: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
1: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
5: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
6: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
5: अच्छा, कौन सा?
6: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप, 8440853474।
7: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
8: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्सी आए।
9: अरे भाई, क्या हुआ?
10: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
9: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफ टॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
1: कॉल करें 9257036191।
11: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
12: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
13: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
12: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना।
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा प्लॉट नंबर 5 सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83 भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा Level 1 and 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
10: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
8: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
3: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
4: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
3: बोल लालंकार CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
5: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
6: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
7: न्यू गर्ल्ड सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
2: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
0: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
3: आपकी आँखें हैं अनमोल, आपकी आँखों को चाहिए बेहतर।

0: देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
1: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
0: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
1: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
0: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
2: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
0: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
2: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
0: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
2: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
0: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari. MLP International School, Rajpura Rewari. MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere Bhav भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLPians जैसा। MLP नाम ही काफी है।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
7: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
8: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
7: गुरुग्राम? इतनी दूर?
8: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
7: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
8: मतलब?
7: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
8: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
7: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, A ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
9: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
10: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
11: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
7: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
8: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो Realme ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
3: विजय फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
4: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
5: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
7: बोलिए मुझे जीजा जी।
8: क्या जी?
7: क्या आपने लगाई PNG?
8: हाँ जी।
7: क्यों जी?
8: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
7: और सेफ्टी
8: की चिंता स्टॉप,
7: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
8: मतलब
7: एक्स्ट्रा खर्चा
8: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
7: हाँ जी
8: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
7: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
8: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
7: बिल्कुल सही।
8: तो आप भी अपनाओ PNG
7: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
9: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
10: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
9: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
10: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
9: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
11: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
12: अरे इसमें क्या है?
11: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
12: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
11: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
12: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
11: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
12: इनका एड्रेस क्या है?
11: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
1: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
2: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
6: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
6: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
7: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01493493322 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
6: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
5: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
6: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
5: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
7: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
5: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
7: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
8: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
9: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं, कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
8: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क संपर्क करें। OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पापा दांत में दर्द हो रहा है।
1: बेटा इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
2: अरे क्या आपको पता नहीं है अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है?
1: अच्छा कौन सा?
2: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3 कोनाक OSS सोसाइटी जेनेसिस मॉल के पास अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
3: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
4: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
5: अरे भाई क्या हुआ?
6: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
5: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: कॉल करें 9257036191।
7: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
8: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
9: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
8: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा, और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना।
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती है।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
4: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है। एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
5: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच।
6: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSE. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere Bhav भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLP जैसा, MLP नाम ही काफी है।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
9: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: अरे कहाँ जा रही हो?
11: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
10: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
11: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
10: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
12: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेड़ा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT ऑडियो

0: MRI, 32 slice 3D CT scan, 5D ultrasound, color Doppler digital X-ray DR, TMT, EEG, वो fully computerized pathology lab प्रतिदिन उपलब्ध है।
1: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
0: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
2: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
3: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
4: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
2: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चलें?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
4: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
5: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
4: बोल लल्लन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
7: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
6: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: Ready to unlock your child's brilliance at MLP Group of Schools. We offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari. MLP International School, Rajpura, Rewari. MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere Bhav भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLPians जैसा, MLP नाम ही काफी है।
3: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन, यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप

0: बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं। जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
1: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
2: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
1: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
2: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
1: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
3: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
1: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
3: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
1: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
3: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
1: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है, और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
6: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
7: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं, और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं, और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
8: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
9: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
8: गुरुग्राम? इतनी दूर?
9: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
8: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
9: मतलब?
8: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट, और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
9: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
8: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, A ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
10: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
11: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
12: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
13: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
14: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
7: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
8: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
9: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
11: बोलिए मुझे जीजा जी।
12: क्या जी?
11: क्या आपने लगाई PNG?
12: हाँ जी।
11: क्यों जी?
12: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
11: और सेफ्टी
12: की चिंता स्टॉप,
11: और गैस खत्म हुई तो
12: ये टेंशन भी स्टॉप।
11: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
12: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
11: हाँ जी,
12: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
11: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
12: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
11: बिल्कुल सही।
12: तो आप भी अपनाओ PNG
11: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
13: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
14: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
13: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
14: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
13: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
15: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
16: अरे इसमें क्या है?
15: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
16: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
15: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
16: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
15: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
16: इनका एड्रेस क्या है?
15: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
17: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
2: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 अनदर ब्रांच।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
6: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
7: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
8: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लास रूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
7: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
9: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
10: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
11: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
10: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
11: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
12: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
2: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
2: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in both

0: exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura, Rewari, MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere bhavishya ke liye koi nahi aisa, MLPians jaisa. MLP naam hi kaafi hai.
1: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
2: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं। इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
3: अरे, क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
2: अच्छा, कौन सा?
3: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक ओएसएस सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप, 8440853474।
4: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
5: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
6: अरे भाई, क्या हुआ?
7: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
6: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहां पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
7: कॉल करें 9257036191।
8: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
9: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी, सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
10: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी लोगों के लिए या
9: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा, और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़, और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
6: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 और 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351-004500।
8: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
9: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
10: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
8: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आंखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
3: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं, सिर्फ आकाश। एडमिशन्स ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
4: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
5: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
4: बोल लालन टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
7: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
8: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
9: न्यू गर्ल्ड सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
2: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच M2।
3: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8852073448।
4: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
5: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
6: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
7: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
6: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
7: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
6: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
8: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
6: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
8: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
6: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
8: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
6: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चले?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
6: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं, और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं, और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
7: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
8: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
7: गुरुग्राम? इतनी दूर?
8: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
7: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
8: मतलब?
7: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट, और सबसे अच्छी बात चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
8: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
7: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
9: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
10: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
11: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
7: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
8: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ, 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 AMAH बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
12: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
13: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
12: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
13: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
1: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
2: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
3: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब
5: एक्स्ट्रा खर्चा
6: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी,
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं, और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5, गणपति मॉल, भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी से

0: यहाँ टावर एसी, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड एलईडी टीवी सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
0: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
4: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
5: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
6: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
5: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
7: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, दो बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
8: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
9: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
8: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
9: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
10: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank one in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari; MLP International School, Rajpura Rewari; MLP World School, Tijara Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLP जैसा। MLP नाम ही काफी है।
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
3: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
1: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
3: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
4: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
5: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
4: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा। यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere Bhav भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा MLPians जैसा, MLP नाम ही काफी है।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
6: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
7: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
6: अच्छा, कौन सा?
7: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
8: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
9: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
10: अरे भाई, क्या हुआ?
11: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
10: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
11: कॉल करें 9257036191।
12: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066। 0800-222-0808
13: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
13: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
6: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
7: अरे कहाँ जा रही हो?
8: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
7: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
8: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
7: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
10: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी

0: डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
1: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D सीटी स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
2: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
3: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
4: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
2: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं, सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
1: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों?
2: बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे,
1: इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
3: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
1: बोल लालंकार। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टेक्ट करे 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन, यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8852073448।
3: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
4: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
5: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
6: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
5: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
6: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
5: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
5: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
7: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
5: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
7: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
5: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
2: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच M2।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं, और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं, और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
6: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
7: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
6: गुरुग्राम? इतनी दूर?
7: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
6: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
7: मतलब?
6: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट, और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
7: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
6: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, A ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
8: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
9: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
10: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
11: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
7: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari; MLP International School, Rajpura Rewari; MLP World School, Tijara Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा एमएलपी जैसा। एमएलपी नाम ही काफी है।
4: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: ये क्या अभी भी डीजल कार चला?

0: रहे हो, अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
1: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
2: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
3: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: कि आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो
6: ये टेंशन भी स्टॉप।
5: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
6: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचा।
5: हाँ जी,
6: हाँ जी, हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं, और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
4: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
5: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
1: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
5: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी, आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
6: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
7: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
8: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
7: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
8: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
9: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
1: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
0: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
1: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
0: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
2: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
0: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
2: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
3: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
4: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
3: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चलें?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: पापा दांत में दर्द हो रहा है।
6: बेटा इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
7: अरे क्या आपको पता नहीं है अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है?
6: अच्छा कौन सा?
7: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3 कोनाक ओएसएस सोसाइटी जेनेसिस मॉल के पास अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
8: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
9: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
10: अरे भाई क्या हुआ?
11: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
10: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल भिवाड़ी।
11: कॉल करें 9257036191।
12: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-93222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: अरे कहाँ जा रही हो?
6: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
5: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
6: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
5: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
10: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
11: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन,
7: भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co. .in आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
11: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
10: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की, तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं, सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
1: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
2: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
1: बोल लल्लनटॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: न्यू गर्ग सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना।
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती है।
1: तो कब चले?

0: curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank one in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA, and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari; MLP International School, Rajpura Rewari; MLP World School, Tijara Rajasthan. Sunhere bhavishya ke liye koi nahi aisa, MLP ans jaisa. MLP naam hi kaafi hai.
1: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
2: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
3: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
4: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
5: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, वोग, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
4: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
5: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
4: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
6: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
6: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
6: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।

0: लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
3: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं, और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं, और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
7: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
8: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
7: गुरुग्राम? इतनी दूर?
8: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
7: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
8: मतलब?
7: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट, और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
8: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
7: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, A ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
9: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
10: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
11: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
7: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
8: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
3: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
4: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
5: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
7: बोलिए मुझे जीजा जी।
8: क्या जी?
7: क्या आपने लगाई PNG?
8: हाँ जी।
7: क्यों जी?
8: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
7: और सेफ्टी
8: की चिंता स्टॉप,
7: और गैस खत्म हुई तो
8: ये टेंशन भी स्टॉप।
7: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
8: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।

0: भी अपनाओ PNG और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
1: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
2: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
2: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
3: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
4: अरे इसमें क्या है?
3: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
4: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
3: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
4: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
3: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
4: इनका एड्रेस क्या है?
3: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है, और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899-247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन।
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
7: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
8: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
9: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
8: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी, आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
10: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
11: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
12: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
11: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
12: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं, और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
13: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चले?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
6: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
5: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
6: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
5: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
7: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
5: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
7: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
8: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
9: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
8: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
4: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच।
5: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
6: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
7: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
6: अच्छा, कौन सा?
7: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3 कोनाक OSS सोसाइटी जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
8: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
9: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
10: अरे भाई क्या हुआ?
11: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
10: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहां पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
11: कॉल करें 9257036191।
12: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
6: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा। और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: MBA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence.
1: For 30 years,
0: choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari. MLP International School, Rajpura Rewari. MLP World School, Tijara Raniasa. MLP Instasa. MLP naam hi kaafi hai.
2: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
3: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
2: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
3: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
4: अरे कहाँ जा रही हो?
5: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
4: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
5: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
4: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर पॉपुलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 और 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
11: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।

0: करता है।
1: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो ओपीडी की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आंखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-93222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
1: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं, सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
4: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों?
5: बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले।
6: छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें।
4: इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
4: ओल लाल टॉप, CNG से मिले इतने फायदे तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
1: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चले?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
8: आपकी आँखें हैं अनमोल, आपकी आँखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Grisal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
8: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
8: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929। 3309।
11: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
10: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
11: रेटिना आँख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आँखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
10: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
11: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उजला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन्मय ज्वेलर्स ही आए।
1: Ready to unlock your child's brilliance at MLP Group of Schools? We offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSE. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा MLP जैसा, MLP नाम ही काफी है।
2: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
3: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
4: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
5: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
6: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
7: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
3: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
8: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
9: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
9: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।

0: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
1: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
2: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच।
3: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
4: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी,
5: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
6: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983-04010 पर।
7: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2, ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
8: बोलिए मुझे जीजा जी।
9: क्या जी?
8: क्या आपने लगाई PNG?
9: हाँ जी।
8: क्यों जी?
9: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
8: और सेफ्टी
9: की चिंता स्टॉप,
8: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप,
9: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
8: हाँ जी
9: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
8: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
9: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
8: बिल्कुल सही।
9: तो आप भी अपनाओ PNG
8: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
10: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
11: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं, और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
10: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
11: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
10: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
12: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
13: अरे इसमें क्या है?
12: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
13: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
12: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
13: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
12: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
13: इनका एड्रेस क्या है?
12: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere Bhav भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा MLPians जैसा, MLP नाम ही काफी है।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 5PPD TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
6: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
1: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
6: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
7: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
8: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
9: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
8: अच्छा।

0: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
1: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
2: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara Rajasthan. Sunhere Bhav भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा MLPians जैसा, MLP नाम ही काफी है।
5: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
6: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
5: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
6: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
5: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
7: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
5: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
7: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
8: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
9: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
8: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहाँ मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहाँ मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
4: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं। इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
5: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है?
4: अच्छा, कौन सा?
5: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक ओएसएस सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप, 8440853474।
6: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
7: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
8: अरे भाई, क्या हुआ?
9: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
8: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफ टॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
9: कॉल करें 9257036191।
10: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
11: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
12: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी लोगों के लिए या
11: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
4: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा, और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: अरे कहाँ जा रही हो?
3: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
2: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
3: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
2: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
4: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
5: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
6: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
7: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, कॉल 8058304500।
8: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
9: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
1: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
1: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, मल्टी स्पेशलिटी, सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
2: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
3: आपकी आँखें हैं अनमोल, आपकी आँखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
4: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
3: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
4: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
3: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने, BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
5: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चलें?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
6: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
7: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 अनदर ब्रांच।
8: राहुल यार मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
9: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
9: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
10: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
11: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
10: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
11: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
10: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
12: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान, अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
13: आप सोच रहे होंगे कि सीएनजी पंप पर इतनी खुशी क्यों?
14: बात यह है, सीएनजी अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे,
13: इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी सीएनजी ही डलता है
15: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
13: ओल लैंड टॉप। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
16: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
17: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
18: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
19: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
20: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती है।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara Rajasthan. Sunhere Bhavi भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLPians जैसा। MLP नाम ही काफी है।
5: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर

0: एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
0: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग, वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
4: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
5: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
4: गुरुग्राम? इतनी दूर?
5: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
4: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
5: मतलब?
4: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
5: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
4: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, A ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
6: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
7: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
8: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
4: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
5: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
0: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
0: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। देश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
3: विजय फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी
4: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
5: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
7: बोलिए मुझे जीजा जी।
8: क्या जी?
7: कि आपने लगाई PNG?
8: हाँ जी।
7: क्यों जी?
8: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
7: और सेफ्टी
8: की चिंता स्टॉप,
7: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
8: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
7: भी स्टॉप।
8: जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
7: हाँ जी
8: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
7: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
8: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
7: बिल्कुल सही।
8: तो आप भी अपनाओ PNG
7: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
9: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
10: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
9: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
10: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
9: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
11: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
12: अरे इसमें क्या है?
11: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
12: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
11: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
12: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
11: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहां मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
12: इनका एड्रेस क्या है?
11: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
1: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
2: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
6: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
6: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
7: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: Ready to unlock your child's brilliance at MLP Group of Schools? We offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere Bhavi भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLPians जैसा, MLP नाम ही काफी है।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
6: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
7: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
8: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
7: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
8: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
7: SS
4: हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 से 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
9: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध है अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
4: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
9: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
10: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
11: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
10: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
12: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: पापा दांत में दर्द हो रहा है।
1: बेटा इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
2: अरे क्या आपको पता नहीं है अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है?
1: अच्छा कौन सा?
2: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3 कोनाक ओएसएस सोसाइटी जेनेसिस मॉल के पास अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
3: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
4: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
5: अरे भाई क्या हुआ?
6: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
5: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: कॉल करें 9257036191।
7: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
8: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
9: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी लोगों के लिए या
8: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
1: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा, और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000014 पर।
3: अरे कहाँ जा रही हो?
4: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
3: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
4: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
3: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
5: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल

0: 999
1: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI 32 स्लाइस 3D CT स्कैन 5D अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे DR TMT EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
2: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
1: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
3: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
4: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
5: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
3: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाज़ा।

0: नियर मैकडोनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना।
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
5: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है। एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
6: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 अनदर ब्रांच।
7: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
8: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
7: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
8: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
9: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
10: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
11: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
12: आपकी आँखें हैं अनमोल, आपकी आँखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
13: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
12: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
13: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
12: गणपति मॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने बीडीआई सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
14: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSE. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari; MLP International School, Rajpura Rewari; MLP World School, Tijara Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा एमएलपी जैसा। एमएलपी नाम ही काफी है।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
1: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं, सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन। आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों?
7: बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले।
6: झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है।
8: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
6: बोल लालंकार। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
1: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
9: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टैक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं, और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं, और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
3: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
4: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
3: गुरुग्राम? इतनी दूर?
4: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
3: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
4: मतलब?
3: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
4: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
3: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक ए ब्लॉक A140 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
5: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
6: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
7: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
3: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
4: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
8: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
9: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
9: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
3: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच।
4: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
5: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी,
6: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983-04010 पर।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2, ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
9: बोलिए मुझे जीजा जी।
10: क्या जी?
9: क्या आपने लगाई PNG?
10: हाँ जी।
9: क्यों जी?
10: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
9: और सेफ्टी
10: की चिंता स्टॉप,
9: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप,
10: मतलब
9: एक्स्ट्रा खर्चा
10: भी स्टॉप, जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
9: हाँ जी
10: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG।
9: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
10: बिल्कुल सही,
9: तो आप भी अपनाओ PNG
10: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
11: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
12: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं, और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
11: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
12: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
11: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
13: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
14: अरे इसमें क्या है?
13: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
14: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो? लेकिन आप दिल्ली कब गए?
13: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
14: इनका एड्रेस क्या है?
13: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
1: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
0: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
1: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
2: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
3: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
4: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलेटेड हो।
5: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
4: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
6: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
7: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
8: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
7: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
8: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
9: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना।
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
5: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
3: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
5: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
6: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
7: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
6: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहाँ पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: Ready to unlock your child's brilliance at MLP Group of Schools? We offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere Bhavi भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLP जैसा, MLP नाम ही काफी है।
3: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
4: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं। इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
5: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
4: अच्छा, कौन सा?
5: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3 कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
6: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
7: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
8: अरे भाई क्या हुआ?
9: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
8: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहां पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
9: कॉल करें 9257036191।
10: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी 9887066308।
0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग

0: विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाए मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाए ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
3: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: अरे कहाँ जा रही हो?
5: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
4: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
5: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
4: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
6: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
7: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
7: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
9: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
10: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzen.co, armorjain.in Armorjain, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
11: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
9: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आंखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन, यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
3: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
4: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
5: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
6: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
5: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
6: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
5: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
7: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: राहुल यार मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
6: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
5: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
6: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
5: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
7: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।

0: आप सोच रहे होंगे कि सीएनजी पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, सीएनजी अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी सीएनजी ही डलता है
1: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
0: बोल लल्लनटॉप। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, एमआरपी की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है एमआरपी को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी फाइव स्टार होटल में बैठे हैं और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं। साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर।

0: बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
1: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
2: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
1: गुरुग्राम? इतनी दूर?
2: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
1: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
2: मतलब?
1: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
2: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
1: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
3: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
4: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
5: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
1: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
2: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
6: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
7: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
6: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
7: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ, फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चले?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: Ready to unlock your child's brilliance at MLP Group of Schools? We offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tijara Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा MLP अंश जैसा। MLP नाम ही काफी है।
6: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
7: विजय फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
8: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
7: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800123 4494 या 9983040100 पर।
9: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
10: बोलिए मुझे जीजा जी।
11: क्या जी?
10: क्या आपने लगाई PNG?
11: हाँ जी।
10: क्यों जी?
11: क्योंकि क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप तो बुकिंग का झंझट स्टॉप
10: और सेफ्टी
11: की चिंता स्टॉप
10: और गैस खत्म हुई तो
11: ये टेंशन भी स्टॉप।
10: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
11: भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
10: हाँ जी
11: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
10: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
11: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
10: बिल्कुल सही।
11: तो आप भी अपनाओ PNG
10: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
12: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
13: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
12: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
13: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
12: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
14: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
15: अरे इसमें क्या है?
14: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
15: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
14: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
15: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
14: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
15: इनका एड्रेस क्या है?
14: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
1: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
0: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
1: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
2: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT। मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलेटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी आरजे साहिल के साथ और आरजे यस के साथ।
2: जी हाँ दोस्तों, आपने आवाज तो सुनी ही होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और अगर परसों नहीं तो सुबह 8 से 10 और शाम 7 से 9 तो जरूर सुनी होगी। लेकिन अभी मैं लेकर आया हूँ सिलसिला कहानियों का।
1: गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे वहाँ से किसी के रोने की आवाज आती है।
2: और दोस्तों इतना ही नहीं, एक रात राहुल और उसके दोस्त हिम्मत करके वहाँ गए। जैसे ही राहुल ने कुएं में झांका, अंदर से आवाज आई,
3: मुझे इस कुएं से बाहर निकालो।
2: और राहुल डर गया। तभी उसके दोस्त गायब हो गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। जिसकी आंखें पूरी काली थी और वो धीरे से बोली,
3: अब तुम भी यही रहोगे।
2: और अगली सुबह कुएं के पास राहुल का मोबाइल मिला, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला।
3: तो दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए
2: शहर का नंबर 1 रेडियो 90.8 FM 24 आपका रेडियो
3: आपकी धड़कन।
4: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा निशलावा थी,

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: अरे कहाँ जा रही हो?
2: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
1: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
2: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
1: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
3: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपीडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
4: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
4: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
6: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
7: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
8: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
6: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
9: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी RJ साहिल के साथ और RJS के साथ।
10: जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होता है कहानियों का सिलसिला। चलिए लेकर चलते हैं इस कहानी की थोड़ी सी गहराई की ओर।
11: नए हॉस्टल में सबने अर्जुन को चेतावनी दी, कमरा नंबर 309 में मत जाना।
10: लेकिन रास्ता होने के कारण उसने वही कमरा ले लिया।
9: रात के 2 बजे उसके फोन में एक वीडियो आई जिसमें वही कमरा दिख रहा था। वीडियो में अर्जुन सो रहा था और उसके पीछे कोई खड़ा था।
10: अर्जुन ने डर कर पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी वीडियो में वो चीज धीरे धीरे धीरे धीरे उसके पास आने लगी और अचानक अर्जुन के कान में आवाज आई,
12: अब वीडियो खत्म, अब तेरी बारी शुरू।
10: अभी कहानियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है।
2: मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 90.8 FM 24,
10: आपका रेडियो,
2: आपकी धड़कन।

लाओ, जिसको नाचना है ना चाहो, मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये कर...

0: राम भट्ट
1: महेश भट्ट।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
3: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
4: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
3: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
6: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
7: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच M2।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।
8: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी RJ साहिल के साथ और RJ यस के साथ।
9: जी हाँ, लेकिन यहाँ पर कहानियों का सिलसिला अभी भी जारी है।
8: शमशान वाली सड़क। एक आदमी रात में बाइक से लौट रहा था, रास्ता सुनसान था। अचानक एक लड़की सफेद कपड़े में सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने मदद मांगी तो आदमी ने उसे बाइक पर बिठा लिया।
9: कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि लड़की के पैर उल्टे हैं। डर के मारे उसने पीछे देखा, सीट खाली थी। लेकिन अगले ही पल उसके कान के पास कोई फुसफुसाया।
10: मैं अभी भी तेरे पीछे बैठी हूँ।
9: लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानियों का सिलसिला अभी बिल्कुल खत्म नहीं होता है।
11: मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 90.8 FM 24,
9: आपका रेडियो
11: आपकी धड़कन।
12: लंबड़दार

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
3: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी RJ साहिल के साथ और RJ यस के साथ।
4: जी हाँ दोस्तों, और अभी कहानियों का सिलसिला जारी है।
5: घर में एक पुराना आईना था जिसे दादी हमेशा कपड़े से ढक कर रखती थी। उन्होंने कहा था रात में इसे मत देखना।
4: एक रात पूजा ने मजाक में कपड़ा हटाया और आईने में देखा। पहले तो सब ठीक था, लेकिन अचानक आईने में उसका चेहरा मुस्कुराने लगा, जबकि पूजा नहीं मुस्कुरा रही थी। फिर आईने वाला चेहरा बोला,
6: अब मैं बाहर आऊंगी और तू अंदर जाएगी।
5: और अगली सुबह आईने में सिर्फ पूजा दिख रही थी और मदद मांग रही थी।
4: तो दोस्तों, अभी यहाँ पर कहानियों का सिलसिला बाकी है
3: और आगे हम बताएंगे।
1: मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 90.8 FM 24,
4: आपका रेडियो,
1: आपकी

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना।
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere Bhav भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLPians जैसा। MLP नाम ही काफी है।
5: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
6: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
7: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
9: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
10: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
9: गुरुग्राम? इतनी दूर?
10: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
9: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
10: मतलब?
9: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
10: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
9: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
11: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
12: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
13: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
14: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
10: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% % डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000 और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15 सी कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, जीरो डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
15: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
16: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
15: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी तो बहुत महंगी होगी ना।
16: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
17: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी RJ साहिल के साथ और RJ यश के साथ।
18: जी हाँ दोस्तों, और अभी बाकी है कहानियों का सिलसिला।
17: रोहित के दोस्त को मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। रात को अचानक उसके दोस्त के नंबर से कॉल आया और डरते हुए उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज थी। फिर धीमी आवाज आई,
18: अकेला हूँ, तू भी आ जा। उसी वक्त रोहित के कमरे की लाइट बंद हो गई। फोन की स्क्रीन पर लिखा था कॉलिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड।
19: और यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
2: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
3: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
5: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
6: बोलिए मुझे जीजा जी।
7: क्या जी?
6: क्या आपने लगाई PNG?
7: हाँ जी।
6: क्यों जी?
7: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
6: और सेफ्टी
7: की चिंता स्टॉप,
6: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
7: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
6: हाँ जी
7: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
6: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
7: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
6: बिल्कुल सही।
7: तो आप भी अपनाओ PNG
6: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
8: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
9: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
8: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
9: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
8: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
10: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
11: अरे इसमें क्या है?
10: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
11: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
10: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
11: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
10: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
11: इनका एड्रेस क्या है?
10: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
12: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का, मेरे यानी RJ साहिल के साथ और RJ यश के साथ।
13: जी हाँ, और हम फिर से लेकर आ गए हैं सिलसिला कहानियों का।
12: स्कूल में एक कमरा था जो सालों से बंद था। कहते थे वहाँ एक बच्चा मर गया था। एक दिन कुछ बच्चे हिम्मत करके ताला तोड़ा और अंदर सब धूल से भरा था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर ताजा लिखा हुआ था,
13: तुम देर से आए। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पीछे से बच्चों को किसी के हंसने की आवाज आने लगी।
14: सुनते रहिए 90.8 FM, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
4: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
5: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
6: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
5: SPS ग्लोबल स्कूल, नियर कैपिटल मॉल, भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
7: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
8: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
9: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
8: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
9: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
10: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी, 8529113916 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।
11: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी आरजे साहिल के साथ और आरजे यश के साथ।
12: जी हाँ, और हम फिर से लेकर आ गए हैं सिलसिला कहानियों का।
11: एक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 रात को बंद रहता था। कहते थे वहाँ से एक ट्रेन आती है जो असली नहीं होती। एक आदमी गलती से वहीं पहुँच गया। रात को 1 बजे ट्रेन आई और सारे लोग बिना चेहरे के थे।
12: एक बूढ़े आदमी ने कहा, जल्दी बैठ जा, ये ट्रेन सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए रुकती है। तभी आदमी ने देखा उसके हाथ पारदर्शी हो चुके थे।
13: मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ, तब तक सुनते रहिए 90.8 FM 24।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
7: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
6: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
7: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
6: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
8: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
6: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
8: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
9: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
10: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
9: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर भिवाड़ी।
11: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
12: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मेरे यानी RJ साहिल के साथ और RJ यश के साथ।
13: जी हाँ, और अंतिम पड़ाव पर है हमारा सिलसिला कहानियों का।
12: एक परिवार नए घर में शिफ्ट हुए। हर रात ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आती थी। जब पिता ऊपर गया तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर बच्चों के हाथों के निशान थे।
13: रात को उनकी छोटी बेटी बोली,
14: मम्मी ऊपर वाले बच्चे मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं।
13: माँ ने पूछा, कौन बच्चे?
14: मम्मी जो दीवार के अंदर कर रहते हैं। इसी के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो अभी कॉल कीजिए हमारे नंबर पर। कॉन्टेक्ट नंबर तो आप सभी को याद है, अगर नहीं है तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, 8432666588। और ऐसी ही अनसुनी कहानी के लिए अभी कॉल करके बताइए। और कल फिर मिलते हैं ऐसी ही अनसुनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गर्मी में पीते रहिए ठंडा ठंडा शरबत और सुनते रहे 90.8 FM 24 शहर का नंबर 1 रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।
1: Ready to unlock your child's brilliance at MLP Group of Schools? We offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura, Rewari, MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा एमएलपीएंस जैसा, एमएलपी नाम ही काफी है।
2: पापा दांत में दर्द हो रहा है।
3: बेटा इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
4: अरे क्या आपको पता नहीं है अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है?
3: अच्छा कौन सा?
4: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3 कोनाक ओएसएस सोसाइटी जेनेसिस मॉल के पास अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
5: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
6: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
7: अरे भाई क्या हुआ?
8: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
7: अरे भाई और कहीं क्यों जाना जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहां पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
8: कॉल करें 9257036191।
9: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी 9887066308।
10: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
11: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
10: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 98

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चले?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000014 पर।
5: राहुल यार मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
6: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
5: अरे भाई इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
7: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
9: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
8: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
9: ECHS, RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
8: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
10: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा, आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
8: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
10: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
11: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं।
12: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
11: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही है। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
13: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या आप धारू हेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
4: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारू हेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 अनदर ब्रांच।
5: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura, Rewari, MLP World School, Tejara, Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा MLPians जैसा, MLP नाम ही काफी है।
6: पापा दांत में दर्द हो रहा है।
7: बेटा इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
8: अरे क्या आपको पता नहीं है अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है?
7: अच्छा कौन सा?
8: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
9: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
10: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, 1 से 1 उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
11: अरे भाई क्या हुआ?
12: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
11: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
12: कॉल करें 9257036191।
13: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066। 0800-333-0808
14: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
14: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
7: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
15: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अरे कहाँ जा रही हो?
1: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
0: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
1: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
0: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
2: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
3: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
3: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
5: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
6: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
7: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
5: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 44, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
7: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
6: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन, यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
9: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक औद्योगिक इकाइयों के बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया सदर बाजार के पीछे गोपीनाथ रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
10: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
11: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
12: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस। Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, Oakley, Prada, Jeez, Essilor Crizal, Vision RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
11: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
12: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
11: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
13: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
3: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
2: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
3: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास हरीश बेकरी के पास भिवाड़ी।
2: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
4: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
5: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है CNG अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
6: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
5: बोल लल्लनटॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
8: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
7: एकता मोटर्स अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
9: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
2: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच।
3: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं, और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं, और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
4: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
5: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
4: गुरुग्राम? इतनी दूर?
5: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
4: ये बात पहले सही थी, पर अब नहीं।
5: मतलब?
4: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट, और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
5: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
4: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी, सब कुछ घर के पास, भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर, 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
6: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
7: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
8: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
4: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
5: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर, या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है। अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
1: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
0: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
1: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
2: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज। और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
3: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
4: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
5: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
7: बोलिए मुझे जीजा जी।
8: क्या जी?
7: क्या आपने लगाई PNG?
8: हाँ जी।
7: क्यों जी?
8: क्योंकि

0: की चिंता स्टॉप और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत। हाँ जी हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG, बिल्कुल सही। तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
1: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
2: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
1: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
2: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
1: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
3: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
4: अरे इसमें क्या है?
3: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
4: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
3: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
4: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
3: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
4: इनका एड्रेस क्या है?
3: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना।
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चले?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari. MLP International School, Rajpura Rewari. MLP World School, Tijara, Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा MLPians जैसा। MLP नाम ही काफी है।
4: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF Rapid 550D TMT।
5: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
6: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलेटेड हो।
7: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
6: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
8: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
9: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
10: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
9: अच्छा श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
10: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
11: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916। 7340013916। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड, नियर बाय थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
5: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
4: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
5: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
4: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
6: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
4: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
6: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
7: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
8: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
7: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
9: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: पापा दांत में दर्द हो रहा है।
3: बेटा इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
4: अरे क्या आपको पता नहीं है अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है?
3: अच्छा कौन सा?
4: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
5: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
6: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
7: अरे भाई क्या हुआ?
8: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
7: अरे भाई और कहीं क्यों जाना, जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल भिवाड़ी।
8: कॉल करें 9257036191।
9: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक भिवाड़ी, 9887066308।
0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा, और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टैक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना।
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चले?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: अरे कहाँ जा रही हो?
6: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
5: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
6: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए DIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
5: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7 गणपति मॉल समतल मोड़ भिवाड़ी राजस्थान या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर तावड़ू हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
7: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा प्लॉट नंबर 5 सेक्टर 6 और भिवाड़ी B83 भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
8: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
9: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
8: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल मार्केट के पास भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
10: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
11: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
12: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
13: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
14: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन्मय ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है। एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
3: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच M2।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
7: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
0: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
8: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स, भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन RX और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
8: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
8: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने, बीडीआई सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
9: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
10: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari; MLP International School, Rajpura Rewari; MLP World School, Tijara Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLPians जैसा। MLP नाम ही काफी है।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
5: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
4: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
5: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
4: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
6: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की, तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने की।

0: सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं सिर्फ आकाश। एडमिशन्स ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
1: आप सोच रहे होंगे कि सीएनजी पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, सीएनजी अब गांव शहर हर जगह आसानी से मिले। झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी सीएनजी ही डलता है
2: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
1: बोल लल्लनटॉप। सीएनजी से मिले इतने फायदे, तो आप भी सीएनजी अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहाँ मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट भिवाड़ी।
6: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: क्या कर रही है?
4: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
3: फिर से? अभी तो गई थी।
4: हाँ फिर से जाना है।
3: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
4: गाड़ी नॉट इन बजट।
3: अरे गांधी मोटर्स है ना?
4: गांधी मोटर्स?
3: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
4: तो कब चलें?
3: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं, और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं। साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं, और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
6: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
7: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
6: गुरुग्राम? इतनी दूर?
7: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
6: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
7: मतलब?
6: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
7: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
6: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक ए ब्लॉक A140 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
8: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
9: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
10: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
6: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
7: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ, 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 AMAH बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
11: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
12: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
11: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
12: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.macs.in पर।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: Ready to unlock your child's brilliance at MLP Group of Schools. We offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura, Rewari, MLP World School, Tejara, Rajasthan, Sunhere Bhavi भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLP जैसा, MLP नाम ही काफी है।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
6: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
7: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
9: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी,
10: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
12: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
13: बोलिए मुझे जीजा जी।
14: क्या जी?
13: पीएन जी?
14: हाँ जी।
13: क्यों जी? क्योंकि क्योंकि पीएनजी के फायदे हैं नॉन स्टॉप तो बुकिंग का झंझट स्टॉप और सेफ्टी की चिंता स्टॉप
15: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप
13: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप
14: जितना चलाओ उतना ही बिल जगह और पैसे दोनों की बचत
15: हाँ जी
14: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप
15: मैं भी लगवाऊंगी पीएनजी।
14: कहानी किसी भी घर की हो सही फैसला है पीएनजी।
15: बिल्कुल सही
14: तो आप भी अपनाओ पीएनजी
15: और जियो नॉन स्टॉप जिंदगी।
16: टाटा की गाड़ी तो ले ली है अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
17: अरे ढूंढना क्यों है टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
16: अच्छा और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे।
17: अरे नहीं AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल AMC ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
16: अरे वाह तो वेट क्यों करना 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
18: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
19: अरे इसमें क्या है?
18: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
19: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
18: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
19: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
18: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
19: इनका एड्रेस क्या है?
18: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
20: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24 आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
1: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
2: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
3: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
2: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
4: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
5: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
6: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
5: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
6: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
7: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चलें?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
4: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
3: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
4: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
3: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
5: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
3: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
5: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
6: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
7: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
6: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
8: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230001191 और 9785013999।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
3: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
4: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं, और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
3: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
4: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है, और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
5: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
6: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
7: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
6: अच्छा, कौन सा?
7: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3 कोनाक ओएसएस सोसाइटी जेनेसिस मॉल के पास अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
8: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
2: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
9: अरे भाई, क्या हुआ?
10: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
9: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर

0: Enterprises, Rico Chowk, Bhiwadi, 9887066308.
1: Vijay Hospital, Dr. Karan Singh Yadav, Kaan Na Gala Rog Visheshagya, एवं Dr. Praveen Kumari, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
2: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
1: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाए मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाए ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
4: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: अरे कहाँ जा रही हो?
2: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
1: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
2: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी BIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
1: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
3: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गाइनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
4: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
5: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
4: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 एंड 2 फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351-004500।
6: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
7: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co .in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
8: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग, जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
6: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चलें?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
6: तो हमें चुनिए। हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है। एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
7: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 अनदर ब्रांच।
8: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
9: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
8: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
9: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
10: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
11: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
12: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
13: आपकी आंखें हैं अनमोल, आपकी आंखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
14: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, Tommy Hilfiger, O'Kelly, Prada, Jeez, Essilor Crizal, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
13: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
14: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
13: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने बीडीआई सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
15: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari; MLP International School, Rajpura Rewari; MLP World School, Tejara Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा MLPians जैसा। MLP नाम ही काफी है।
1: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
2: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
1: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
3: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आंखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आंखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आंखों की देखभाल।
4: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
3: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
4: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
3: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
5: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं, सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन। आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
6: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों? बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले।

0: छठ से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करें, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करें। इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
1: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
0: बोल लल्लनटॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है, पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: न्यू गर्ल सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
5: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899-247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
3: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
4: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
5: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
4: गुरुग्राम? इतनी दूर?
5: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
4: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
5: मतलब?
4: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
5: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
4: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, A ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
6: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
7: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
8: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
9: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
10: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899-247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
1: विजिट फॉर्च्यून कार्स भिवाड़ी।
2: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, BFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
3: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1-800-123-4494 या 9983040100 पर।
4: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, एल और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011 और 9785013999।
5: बोलिए मुझे जीजा जी।
6: क्या जी?
5: क्या आपने लगाई PNG?
6: हाँ जी।
5: क्यों जी?
6: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
5: और सेफ्टी
6: की चिंता स्टॉप,
5: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
6: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
5: हाँ जी
6: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
5: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
6: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
5: बिल्कुल सही।
6: तो आप भी अपनाओ PNG
5: और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
7: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
8: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
7: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
8: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
7: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
9: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
10: अरे इसमें क्या है?
9: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
10: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
9: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
10: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
9: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
10: इनका एड्रेस क्या है?
9: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चलें?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
6: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
7: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलिएटेड हो।
8: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहां शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेलकूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहां है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
7: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
9: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जांच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु की बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी पुराने RTO ऑफिस के पास भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
10: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
11: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
10: अच्छा श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
11: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला हॉलमार्क HUID। और तो और उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
12: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
4: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच।
5: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000

0: students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA, and NTSE. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches. MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tijara Rajasthan. Sunhere bhavishya ke liye koi nahi aisa, MLPians jaisa, MLP naam hi kaafi hai.
1: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
2: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल भिवाड़ी में।
1: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
2: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
1: SS हॉस्पिटल भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
3: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
1: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
3: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
4: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
5: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं। कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
4: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
6: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7230011191 और 9785013999।
7: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
1: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
0: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
2: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
3: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं, इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
4: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
3: अच्छा, कौन सा?
4: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप, 8440853474।
5: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
6: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
7: अरे भाई, क्या हुआ?
8: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
7: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफटॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
8: कॉल करें 9257036191।
9: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
10: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
11: डॉक्टर अंकित जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे, किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
10: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
3: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो, पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा, और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुँच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी, मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कांटेक्ट करें 01-4934-93222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tejara Rajasthan. Sunhere Bhav भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा, MLPians जैसा। MLP नाम ही काफी है।
5: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
6: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
5: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
6: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
7: अरे कहाँ जा रही हो?
8: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
7: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स ही क्यों?
8: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
7: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
9: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब Derms and Gyne, Orthopedics, Oral and Maxillofacial Surgery, Cashless Facility, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, Apex Hospital, Dharuhera, Plot Number 5, Sector 6 और भिवाड़ी B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
10: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
11: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
10: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 और 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रो स्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57-58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351-004500।
12: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
13: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
14: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
15: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
16: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान ना गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय थड़ा मोड़ भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
5: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है। डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम, यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन, यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
6: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल AC OPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
7: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
8: आपकी आँखें हैं अनमोल, आपकी आँखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
9: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिल्फिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजनार एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
8: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
9: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स,
8: गणपति मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, समतल चौक, भिवाड़ी, और अशियाना आंगन के सामने BDI सोसाइटी के पास, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
1: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
0: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
1: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
0: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आँखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
2: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन। आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
3: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों?
4: बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले।
3: झट से भरे, माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे, इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
5: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
3: बोल ललंकार। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
6: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
7: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंड मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
6: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
8: न्यू गर्ल्स सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहे बाय बाय। कॉन्टेक्ट करे 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-49-34-93-222 या फिर 90-34-96-97-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899-247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
3: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट, नियर निमई सोसाइटी, अपोजिट पावर ग्रिड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
4: अरे यार, आज शाम पार्टी करें?
5: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
4: गुरुग्राम? इतनी दूर?
5: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
4: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
5: मतलब?
4: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
5: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
4: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, ए ब्लॉक, A140, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
6: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है, पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
7: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है, जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
8: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
4: अजी, सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
5: अरे भाग्यवान, सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में, बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899-247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे वे अब

0: अभी तो गई थी।
1: हाँ फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना।
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चलें?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
4: तो हमें चुनिए। हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है। एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
5: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच।
6: ये क्या अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम बशर्ते लागू।
7: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी।
8: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध है।
9: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अम्बेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
11: बोलिए मुझे जीजा जी।
12: क्या जी?
11: क्या आपने लगाई PNG?
12: हाँ जी।
11: क्यों जी?
12: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
11: और सेफ्टी
12: की चिंता स्टॉप,
11: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप।
12: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
11: हाँ जी
12: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप। मैं भी लगवाऊंगी PNG। कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
11: बिल्कुल सही।
12: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
11: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
13: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं, और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
11: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
13: अरे नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
11: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
14: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
15: अरे इसमें क्या है?
14: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
15: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
14: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
15: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
14: अरे वो है ना, भिवाड़ी में अपने शांति

0: की ज्वेलर्स। इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
1: इनका एड्रेस क्या है?
0: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
2: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSE. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari; MLP International School, Rajpura Rewari; MLP World School, Tijara Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा एमएलपीएंस जैसा। एमएलपी नाम ही काफी है।
1: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
2: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
3: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से अफिलिएटेड हो।
4: भिवाड़ी में है एकमात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, ऐसी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
3: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
5: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल, B4 भगत सिंह कॉलोनी, पुराने RTO ऑफिस के पास, भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
6: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
7: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
6: अच्छा, श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
7: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला, हॉलमार्क HUID। और तो और, उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
8: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल, B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी, 8529113916 7340001391 6। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: क्या कर रही है?
2: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
1: फिर से? अभी तो गई थी।
2: हाँ, फिर से जाना है।
1: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
2: गाड़ी नॉट इन बजट।
1: अरे गांधी मोटर्स है ना?
2: गांधी मोटर्स?
1: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
2: तो कब चले?
1: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
4: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
5: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
4: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना?
5: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
6: क्या आपकी त्वचा, बाल या नाखून की समस्या बार बार परेशान कर रही है?
7: अब सही इलाज के लिए मिलिए डॉक्टर गौरव, एम्स से प्रशिक्षित त्वचा रोग विशेषज्ञ, SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी में।
6: मुंहासे, पिगमेंटेशन, एलर्जी, हेयर फॉल से लेकर लेजर, केमिकल पील और बोटॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
7: ECHS RGHS तथा NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सभी प्रमुख TPA मान्य।
6: SS हॉस्पिटल, भिवाड़ी, भरोसेमंद विशेषज्ञ से देखभाल। समय रोजाना शाम 4:30 to 6:30 तक, गुरुवार अवकाश। अब सेहत की चिंता को कहिए अलविदा, क्योंकि स्टार हॉस्पिटल एक बार फिर नई उम्मीद के साथ आपके शहर में। अब स्टार हॉस्पिटल है तो बाहर क्यों जाना, एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध।
8: डॉक्टर विनीत यादव के कुशल नेतृत्व में और यहाँ उपलब्ध हैं अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश अरोड़ा। आपके दिल का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, हृदय रोगों के लिए सबसे भरोसेमंद देखभाल, हर पल आपकी सेहत का रखेंगे पूरा ख्याल।
6: आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर और भरोसे की पहचान, स्टार हॉस्पिटल आपकी सेहत का सच्चा साथी। कॉल करें 7300484848 या विजिट करें www.starhospital.com.in।
8: स्टार हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी प्राथमिकता।
9: पूजा, तुम्हारे फेस पर कितने पिंपल्स और धब्बे हो रहे हैं?
10: हाँ यार, और बाल भी हर दिन झड़ रहे हैं, कई बार दिल्ली गुरुग्राम में भी दिखा चुकी हूँ।
9: अरे पूजा, अब दिल्ली या गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी भिवाड़ी में है डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, जहाँ पर स्किन, हेयर एंड नेल्स की सभी बीमारियों का पूर्ण इलाज डॉक्टर सुचेता MD डर्मेटोलॉजी द्वारा किया जाता है, जो भिवाड़ी में अपनी सेवाएं दे रही। इनके यहाँ लेजर हेयर रिमूवल, माइक्रो नीडलिंग, PRP, RF, अन्य सभी स्किन समस्याओं का समाधान विदेशी मशीनों व नई तकनीकों द्वारा किया जाता है। कॉल करें 6367551007। विजिट डॉक्टर सुचेता स्किन क्लिनिक, A56 फर्स्ट फ्लोर, भगत सिंह कॉलोनी, बिहाइंड सुखम टावर, भिवाड़ी।
11: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें OCF2 ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं कैशलेस सर्विस के लिए, कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
3: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार एसी वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
2: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
4: पापा, दांत में दर्द हो रहा है।
5: बेटा, इस समय तो रात के 2 बजे हुए हैं। इस समय तो सभी डेंटल क्लिनिक बंद होंगे।
6: अरे क्या आपको पता नहीं है, अपने शहर भिवाड़ी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के साथ दांतों का अस्पताल है।
5: अच्छा, कौन सा?
6: T32 डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शॉप UG3, कोनाक OSS सोसाइटी, जेनेसिस मॉल के पास, अलवर बाईपास रोड पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्टर संदीप 8440853474।
7: इसी के साथ इनकी सेकंड ब्रांच शॉप नंबर 17 ओमैक्स मेडोसिटी सोसाइटी मटीला भिवाड़ी में भी है।
8: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है, कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है, और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01493493222 या फिर 9034969731 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
9: अरे भाई, क्या हुआ?
10: आज बर्थडे है, सोच रहा हूँ पार्टी देने गुड़गांव या दिल्ली चला जाऊँ।
9: अरे भाई, और कहीं क्यों जाना जब भिवाड़ी में ही खुल गया है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, जहाँ पर फाइन डाइन, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हॉल, रिंग सेरेमनी हॉल, ओपन रूफ टॉप, लाइव म्यूजिक, ओपन चार्ट काउंटर एंड स्वीट शॉप है, जिसका एड्रेस है गेट टुगेदर रेस्टोरेंट ग्रुप ऑफ तिरुपति, अलवर बाईपास रोड, अपोजिट हरिराम हॉस्पिटल, भिवाड़ी।
10: कॉल करें 9257036191।
11: आपके सारे जरूरतों का बीमा एक ही जगह, विधि एंटरप्राइजेज भिवाड़ी। स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, जीवन बीमा, फायर बीमा, सब मिलेगा यहाँ। और हाँ, बीमा कराने पर खास ऑफर भी मिलेंगे। संपर्क करें चंद्रभान, विधि एंटरप्राइजेज, रिको चौक, भिवाड़ी, 9887066308।
0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
5: क्या है ना दोस्तों, हमारे यहाँ हर चीज की शुरुआत मीठे से ही होती है। ऑफिस में प्रमोशन हो या छोटी का रिश्ता तय हो गया हो, बहाना कोई भी हो पर सेलिब्रेशन मीठे से ही होता है। हमारे सेलिब्रेशन का तो साथी ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार है, जिनके यहाँ गाय के शुद्ध दूध से बने ताजा रसगुल्ले, पनीर, छेना, मावा और दोस्तों बर्थडे केक्स का तो क्या कहना, कितने कमाल के हैं। और गुलाब जामुन की तो हमें लग चुकी है लत। पहुंच जाएं मेन सोहना रोड नियर भिवाड़ी मोड़ और बनाएं ओल्ड यादव रसगुल्ला भंडार को अपनी खुशियों का साथी मेरी तरह। कॉन्टेक्ट नंबर 9887142566 या फिर 9992935999।
12: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: अरे कहाँ जा रही हो?
1: मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए अंशुल ज्वेलर्स।
0: अच्छा, पर अंशुल ज्वेलर्स से क्यों?
1: अंशुल ज्वेलर्स के पास है सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन, वो भी DIS के 6 अंकों वाले हॉलमार्क HUID के साथ। और तो और, इनकी ज्वेलरी को हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई HUID फीचर से आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण देख सकते हैं।
0: जी हाँ, खरे आभूषणों की प्रामाणिकता जिसके साथ बढ़ेगी आपकी सुंदरता। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर। हमारा पता, शॉप नंबर 7, गणपति मॉल, समतल मोड़, भिवाड़ी, राजस्थान, या मेन बाजार नजदीक हनुमान मंदिर, तावड़ू, हरियाणा। संपर्क करें 9992533611 या फिर 9354898521 पर। अंशुल ज्वेलर्स, जेवर फॉर एवर।
2: कभी भी इमरजेंसी हो या सिर्फ एक छोटी सी चेकअप की जरूरत हो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा और भिवाड़ी में आपका अपना हॉस्पिटल है। 24 घंटे इमरजेंसी, AC प्राइवेट रूम्स, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, क्लिनिकल लैब, TMT, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, स्किन प्रिक एंड ब्लड एलर्जी टेस्ट, एलर्जी का जड़ से इलाज। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ENT, हेड एंड नेक सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कैशलेस फैसिलिटी, सभी TPA के साथ। तो अब टेंशन मत लो, एपेक्स हॉस्पिटल धारूहेरा, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 और भिवाड़ी, B83, भगत सिंह कॉलोनी। बस एक कॉल या एक विजिट, नो है 8607274999।
3: भारत अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अत्याधुनिक MRI, 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 5D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, DR, TMT, EEG व फुल्ली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब प्रतिदिन उपलब्ध है।
4: भारत डायग्नोस्टिक्स द्वारा गत 20 वर्षों से MD रेडियोलॉजिस्ट, PGI चंडीगढ़ में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा सभी जांचें की जा रही हैं।
3: भारत डायग्नोस्टिक्स पर 5D अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लेवल 1 और 2, फीटल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, लिवर फाइब्रोस्कैन व 3D CT स्कैन मशीन पर एंजियोग्राफी, यूरोग्राफी व एंटेरोग्राफी की जांच भी की जाती है। 1/57/58 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, सेंट्रल मार्केट के पास, भिवाड़ी। कॉल 9351004500।
5: दूसरी ब्रांच A50 भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉल 8058304500।
6: श्रीराम इंडस्ट्रीज आर्मर जैन, भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में एक भरोसेमंद नाम। यहाँ बनते हैं फायर रेटेड और नॉन फायर रेटेड डोर्स, मोटराइज्ड और मैनुअल गेट्स, जनरल पर्पस डोर्स, एक्सेस डोर्स, डॉक लेवलर, फायर हॉज कैबिनेट्स और आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, BIS, CBRI और NABL सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उचित कीमत पर। आर्मर जैन आपको देता है वादा गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का। संपर्क करें 7014735108। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.armorzain.co.in। आर्मर जैन, जब बात हो गुणवत्ता और भरोसे की।
7: सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का पहला नर्सिंग होम जो पिछले 25 वर्षों से सेवारत है। NABH एवं ISO से प्रमाणित सिटी नर्सिंग होम अब मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग के अलावा प्रस्तुत करता है सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे मनोरोग विभाग जिसमें उदासी, अवसाद, नशे की लत एवं समस्त प्रकार के मन के रोगों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्का MD द्वारा किया जाता है। डायबिटीज विभाग जिसमें डायबिटीज को बिना दवा के रिवर्स करना, बिगड़े हुए डायबिटीज में बिना इंसुलिन एवं इंसुलिन के समस्त उपचार विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल सिंह MBBS MS द्वारा किया जाता है।
5: अब हर महीने के पहले बुधवार को न्यूरो OPD की सेवाएं भी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध है, जिसमें आँखों का कमजोर होना, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, स्ट्रोक या चक्कर आना, इन सभी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सहगल द्वारा किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9899201584।
8: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या आप धारूहेड़ा में बेस्ट स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो हमें चुनिए, हम हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेस्ट इन द रीजन, जहां हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ 10th एंड 12th क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे स्कूटी, लैपटॉप्स एंड LED से सम्मानित किया जाता है, एंड 100% स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स।
4: फॉर एडमिशन विजिट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंदरामपुर बास रोड, धारूहेड़ा, और कॉल ऑन 9416575880 एंड अदर ब्रांच।
5: Ready to unlock your child's brilliance? At MLP Group of Schools, we offer a world-class education in a pollution-free environment. Our innovative curriculum fosters curiosity with project-based learning. We nurture well-rounded individuals with top-notch sports facilities. Our expert teachers and cutting-edge classrooms, projectors, smart classes empower over 9,000 students to excel. Safety, discipline, and parent-teacher collaboration are our priorities. Success is a tradition at MLP. Consistent rank 1 in board exams and free special coaching for IIT, NEET, NDA and NTSC. MLP isn't just a school, it's a legacy of excellence for 30 years. Choose from our esteemed branches: MLP Senior Secondary English Medium School, Maheshwari, MLP International School, Rajpura Rewari, MLP World School, Tijara Rajasthan. Sunhere भविष्य के लिए कोई नहीं ऐसा MLP अंश जैसा, MLP नाम ही काफी है।
6: भिवाड़ी का भरोसेमंद हॉस्पिटल गीतांजलि हॉस्पिटल, जो पिछले 14 सालों से आपको सफल सेवाएं देता आ रहा है, डिलीवरी के क्षेत्र में बड़ा नाम। यहाँ आपको मिलती है सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, इंडोर मेडिकल एम्बुलेंस, एक्सरे लैब, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, सभी प्रकार की हड्डियों के ऑपरेशन। यहाँ सभी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हर समय उपलब्ध रहते हैं, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध है। विजिट करें गीतांजलि हॉस्पिटल, अरावली विहार, नियर मनसा चौक, भिवाड़ी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8852073448।
7: भिवाड़ी में 27 वर्षों से सेवारत, भरोसेमंद 24 घंटे इलाज हेतु गोपीनाथ अस्पताल, ISO तथा NABH मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी सेंट्रल ACOPD, 50 बेड की सुविधा से युक्त गोपीनाथ हॉस्पिटल, अत्याधुनिक 3 ऑपरेशन थिएटर, 7 बेड ICU, 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन तथा लेडी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा से युक्त गोपीनाथ अस्पताल। यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट की नियमित OPD भी उपलब्ध है। लगभग सभी TPA कैशलेस सुविधा के साथ तथा भिवाड़ी की व आसपास की औद्योगिक इकाइयों की बीमा कंपनियां भी पैनल पर हैं। पता 226 इंडस्ट्रियल एरिया, सदर बाजार के पीछे, गोपीनाथ रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 01493619563 एंड 9784333863।
8: क्या आप बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं सोलर एनर्जी से आप बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं? जी हाँ, अपने घर, ऑफिस और फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगाएं और भारी बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। सोलर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 30% तक रिटर्न देता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610255584। ग्रीन रूट्स रिन्यूएबल एनर्जी।
9: आपकी आँखें हैं अनमोल, आपकी आँखों को चाहिए बेहतर देखभाल, तो आइए गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स भिवाड़ी।
10: यहाँ मिलते हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के स्टाइलिश फ्रेम और हाई क्वालिटी लेंस, Ray-Ban, Vogue, टॉमी हिलफिगर, ओकेली, प्रदा, जीस, एसिलोर क्रिजाल, विजन आर एक्स और भी कई नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स।
9: साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस, लो विजन क्लिनिक, मायोपिया क्लिनिक, विजन थेरेपी और आधुनिक मशीनों द्वारा कंप्यूटरीकृत आई एग्जामिनेशन, प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट की पूरी टीम।
10: भिवाड़ी में सन 2006 से भरोसे का नाम गुप्ता आई केयर एंड ऑप्टिकल्स।
9: गणपति मॉल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास समतल चौक भिवाड़ी और अशियाना आंगन के सामने बीडीआई सोसाइटी के पास अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी।
10: अपॉइंटमेंट या जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9636061776 या 9928929309।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को सवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-93222 या फिर 9034-96-9731 पर। ऐसे डिजाइन्स जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।

0: macs.in पर।
1: जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी, आँखों का NABH मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आँखों का हॉस्पिटल आपके शहर भिवाड़ी में। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी आपको प्रदान करता है विश्व स्तरीय आँखों की देखभाल।
2: हमारे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में आपको मिलेगी अनुभवी डॉक्टरों, आई सर्जनों की विशेषज्ञ टीम, पूर्णतः मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर MICS टॉपिकल फैको तकनीक से कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन बिना इंजेक्शन और टांके,
1: रेटिना आंख का पर्दा, ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद का उन्नत इलाज, बच्चों की आंखों का इलाज, हमारे पास सभी इंश्योरेंस और TPA पैनल उपलब्ध हैं। निशुल्क कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।
2: आज ही हमें सेवा का मौका दें। जगदम्बा आई हॉस्पिटल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, हरीश बेकरी के पास, भिवाड़ी।
1: संपर्क करें 7424830174। आज ही अपनी आंखों का इलाज कराएं और पाएं एक उज्जला भविष्य। जगदम्बा आई हॉस्पिटल भिवाड़ी।
3: जब बात हो IIT या मेडिकल में सिलेक्शन की तो भिवाड़ी में गूंजता है एक ही नाम, आकाश इंस्टीट्यूट। 37 सालों से लाखों सपनों को दी है उड़ान। अब बारी है आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने की, क्योंकि सफलता के लिए अब काश नहीं सिर्फ आकाश। एडमिशंस ओपन, आज ही विजिट करें आकाश भिवाड़ी ब्रांच या कॉल करें 9599082511।
4: आप सोच रहे होंगे कि CNG पंप पर इतनी खुशी क्यों?
5: बात यह है, CNG अब गांव, शहर, हर जगह आसानी से मिले।
6: छठ से भरे माइलेज बढ़े, खर्चा कम करे, सबकी बचत बढ़े, ज्यादा फायदा करे,
4: इसीलिए बाबू हमारी गाड़ी में भी CNG ही डलता है
7: सर, जो पर्यावरण के लिए भी सेफ है।
4: बोल लाल टॉप। CNG से मिले इतने फायदे, तो आप भी CNG अपनाओ और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
8: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन?
9: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
8: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इन्फॉर्मेशन कॉल 9799278900।
10: न्यू गर्ल्ड सुपर स्टोर, जहां मिलते हैं ग्रोसरीज, ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स। बजट की दुकान, MRP की छुट्टी, आपका फायदा हमारा वादा। अब वक्त है MRP को कहें बाय बाय। कॉन्टेक्ट करें 7413099952 पर, अलवर बाईपास रोड नियर मार्बल मार्केट, भिवाड़ी।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: क्या कर रही है?
1: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
0: फिर से? अभी तो गई थी।
1: हाँ, फिर से जाना है।
0: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
1: गाड़ी नॉट इन बजट।
0: अरे गांधी मोटर्स है ना?
1: गांधी मोटर्स?
0: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
1: तो कब चलें?
0: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
3: जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको लगे कि आप भिवाड़ी में नहीं बल्कि किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं। और यहां के टेस्टी खाने का तो जवाब नहीं, साथ ही पार्किंग वॉशरूम की सुविधा भी। यहां का पार्टी हॉल इतना बड़ा है कि 100+ लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पार्टी हॉल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आज ही विजिट करें जैन असली सिकंजी रेस्टोरेंट नियर निमई सोसाइटी अपोजिट पावर ग्रिड अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9610950073 पर।
4: अरे यार आज शाम पार्टी करें?
5: नहीं यार, आज डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गुरुग्राम जाना था।
4: गुरुग्राम? इतनी दूर?
5: हाँ यार, वहीं तो बेस्ट हाइजीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेनलेस ट्रीटमेंट मिलता है।
4: ये बात पहले सही थी पर अब नहीं।
5: मतलब?
4: गुरुग्राम के ही एक्सपीरियंस्ड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर जितिन टक्कर पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ मिलता है प्रीमियम सेटअप, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्लीट हाइजीन और 100% पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट। और सबसे अच्छी बात, चार्जेस दिल्ली और गुरुग्राम से काफी कम।
5: तो फिर दूर जाने का टेंशन खत्म।
4: बिल्कुल, अब एक्सपीरियंस, भरोसा और क्वालिटी सब कुछ घर के पास भिवाड़ी में। आइए 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक ए ब्लॉक A140 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी। आज ही संपर्क करें डॉक्टर जितिन टक्कर 9871122135। 32 बाइट्स डेंटल क्लिनिक, बेहतर चॉइसेस, बेहतर मुस्कान।
6: राहुल, इंडस्ट्री प्लान तो बढ़िया है पर इस बार अपनी फैक्ट्री के इलेक्ट्रिकल्स पर एक्स्ट्रा फोकस रखना।
7: डोंट वरी सर, इंडस्ट्री का सारा इलेक्ट्रिकल्स खंडेलवाल एजेंसी से आएगा। ये NCR का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस है जहां हमें पैनल, स्विच गियर, मोटर ड्राइव, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग और वायर एंड केबल में 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड ऑप्शंस मिल जाएंगे।
8: खंडेलवाल एजेंसीज, NCR का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल हाउस इन भिवाड़ी।
4: अजी सुनते हो, मेरा फोन टूट गया है।
5: अरे भाग्यवान सुनो, घबराओ नहीं, खंडेलवाल मोबाइल भिवाड़ी लाया है 0% डाउन पेमेंट पर। मोबाइल फोन 9784960000। और सुनो, ओप्पो ने लॉन्च किया है अभी रेनो 15C कम दामों में बजाज फाइनेंस के साथ 0% ब्याज, 10% कैश बैक के साथ, प्लस ट्रॉली बैग, 0 डाउन पेमेंट। और बैटरी से हो परेशान तो रियलमी ने लॉन्च किया है अपना एक नया मॉडल 10,000 mAh बैटरी के साथ। अभी जाइए खंडेलवाल मोबाइल पर ढेर सारे गिफ्ट के साथ, नीलम चौक। चिंता क्यों करते हो, बजाज फाइनेंस है ना अपने साथ। 9784960000 और 9828288666।
9: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवाड़ी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
10: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है।
9: लेकिन इनकी सर्विस भिवाड़ी में तो बहुत महंगी होगी ना?
10: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
11: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।

0: खूबसूरती की एक अलग ही पहचान होती है। कभी ये कानों पर लटकती है तो कभी कमर पर लचकती है, कभी ये माथे पर सजती है तो कभी गले में बसती है, कभी ये हाथों में खनकती है तो कभी पैरों में थिरकती है। और इन्हीं श्रृंगार को संवारता है तन्मय ज्वेलर्स, जहां आपको मिलता है BSI हॉलमार्क ज्वेलरीज, एक से एक उम्दा डिजाइन और कलेक्शंस के साथ। शॉप नंबर 12A, आशियाना आंगन प्लाजा, नियर मैकडॉनल्ड, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी। कॉन्टेक्ट करें 01-4934-9322 या फिर 9034-9697-31 पर। ऐसे डिजाइंस जो तन मन को भाए तो तन में ज्वेलर्स ही आए।
1: राहुल यार, मैंने नोएडा से जॉब स्विच कर दिया है, अब सोच रही हूँ भिवारी में रेंटल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा।
2: चिंता की कोई बात नहीं, मेगा एयर कंडीशनर्स एंड इलेक्ट्रिक सर्विस है ना, ये पूरे दिल्ली NCR में अपनी रेंटल सर्विस दे रहे हैं। और इनके यहाँ टावर AC, विंडो AC, स्प्लिट AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड LED TV, सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
1: लेकिन इनकी सर्विस भिवारी में तो बहुत महंगी होगी ना।
2: बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सर्विस सेम रेट पर मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9899247102 पर या फिर विजिट करें www.maces.in पर।
3: क्या बताऊं यार, कार लेना तो बहुत ही इजी है पर उसकी मेंटेनेंस करवाना बहुत ही मुश्किल। सर्विस के लिए जाओ तो कहीं, इंश्योरेंस के लिए जाओ तो कहीं, कैशलेस सर्विस के लिए कहां मिलेगा इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन।
4: अरे भाई, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन हो पाना तो एकता मोटर वर्कशॉप ही चले जाना, जहां मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ट्रेंट मैकेनिक के द्वारा कार सर्विस, कार AC वर्क के साथ में एक्सीडेंटल वर्क, जीरो डेप इंश्योरेंस रिन्यूअल, स्पेयर पार्ट्स, 3D अलाइनमेंट, व्हील बैलेंस, टेलीफोन कोटिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, कार एक्सेसरी सर्विस और इंश्योरेंस कैशलेस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: एकता मोटर्स, अलवर बाईपास रोड नियर बाय, थड़ा मोड़, भिवाड़ी। फॉर इंफॉर्मेशन कॉल 9799278900।
6: ये क्या, अभी भी डीजल कार चला रहे हो? अब समय है स्मार्ट फ्यूल पर स्विच करने का, वो भी ज्यादा बचत के साथ। पेश है विक्टोरिस SCNG। ये स्मार्ट है क्योंकि ये देता है 27.02 किलोमीटर पर KG का शानदार माइलेज, और इसका अंडरबॉडी CNG टैंक बूट स्पेस पर कोई समझौता नहीं करता। ज्यादा बचत भी, क्योंकि अपनी पुरानी डीजल कार के एक्सचेंज पर पाएं 50,000 रुपए तक का फायदा। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें, अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर जाएं। नियम व शर्तें लागू।
7: विजिट फॉर्चून कार्स भिवाड़ी,
8: मॉडर्न अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भिवाड़ी पर अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से 32 स्लाइस, 3D CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, इको कार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, IVP, बैरियम, HSG, डिजिटल OPG, DMT, ECG, EEG, PFT, मैमोग्राफी व फुली एडवांस कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब की सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
9: नियर सरकारी हॉस्पिटल 135 भिवाड़ी, दूसरी ब्रांच, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर, नियर नगर पालिका ऑफिस, अपोजिट अंबेडकर पार्क, धारूहेड़ा। कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-123-4494 या 9983040100 पर।
10: अब भिवाड़ी के सबसे बड़े NABH सर्टिफाइड SS हॉस्पिटल में स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पाएं। यहां पाएं स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, ब्लड बैंक, L और डायलिसिस, सभी बड़े TPA, कैशलेस, RGHS, ECHS, ESIC, चिरंजीवी योजना की कैशलेस सुविधा, यहां 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए पार्क करें OCF2, ऑपोजिट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी। कॉन्टैक्ट 7233001191 और 9785013999।
11: बोलिए मुझे जीजा जी।
12: क्या जी?
11: क्या आपने लगाई PNG?
12: हाँ जी।
11: क्यों जी?
12: क्योंकि PNG के फायदे हैं नॉन स्टॉप, तो बुकिंग का झंझट स्टॉप,
11: और सेफ्टी
12: की चिंता स्टॉप,
11: और गैस खत्म हुई तो ये टेंशन भी स्टॉप,
12: मतलब एक्स्ट्रा खर्चा भी स्टॉप। जितना चलाओ उतना ही बिल, जगह और पैसे दोनों की बचत।
11: हाँ जी
12: हर झंझट स्टॉप और जिंदगी नॉन स्टॉप।
11: मैं भी लगवाऊंगी PNG।
12: कहानी किसी भी घर की हो, सही फैसला है PNG।
11: बिल्कुल सही।
12: तो आप भी अपनाओ PNG और जियो नॉनस्टॉप जिंदगी।
13: टाटा की गाड़ी तो ले ली है, अब भिवाड़ी में सर्विस सेंटर ढूंढते रहो।
14: अरे ढूंढना क्यों है, टाटा ऑथराइज्ड AK ऑटोमोबाइल है ना, जो संजय मोटर्स की ही यूनिट है। 2017 से भिवाड़ी का भरोसा है, टाटा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं और वहाँ सर्विसिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है।
13: अच्छा, और उसमें क्या खर्चे ही खर्चे?
14: अरे नहीं नहीं, AK ऑटोमोबाइल्स पर कार सर्विसिंग, बॉडी शॉप और व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग के अलावा कैशलेस इंश्योरेंस और रिन्यूअल, AMC, ऑन रोड मेंटेनेंस और एक्सीडेंट वारंटी जैसी सारी फैसिलिटीज हैं, जो खर्चे बहुत ही कम कर देती हैं। मेन रोड पर फूलबाग थाने के पास ही है ये।
13: अरे वाह, तो वेट क्यों करना, 9462369786 पे कॉल करके अभी AK ऑटोमोबाइल पे सर्विस बुक करो जल्दी।
15: सोनम ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
16: अरे इसमें क्या है?
15: वही जो तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए था।
16: ये ब्रेसलेट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था।
15: क्या आप इसे दिल्ली से लाए हो?
16: लेकिन आप दिल्ली कब गए?
15: अरे वो है ना भिवाड़ी में अपने शांति ज्वेलर्स, इनके पास है सोने चांदी हीरे के आभूषणों का सुपर कलेक्शन और यहाँ मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी।
16: इनका एड्रेस क्या है?
15: इनका एड्रेस है शॉप नंबर 5 गणपति मॉल भिवाड़ी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812210987 पर।
17: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो आपकी धड़कन।

0: विजय हॉस्पिटल, डॉक्टर करण सिंह यादव कान नाक गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर प्रवीण कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो पिछले 10 सालों से भिवाड़ी में सेवाएं दे रहे थे, वे अब अपने नए अस्पताल विजय अस्पताल B160 भगत सिंह कॉलोनी सेंट जेवियर स्कूल के नजदीक भिवाड़ी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं एवं नियमित समय OPD सेवाएं प्रदान करेंगे।
1: डॉक्टर अंकित जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अब आपको विजय हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के हड्डी रोगों के लिए या
0: कान ना गले एवं महिलाओं संबंधित परेशानियों के लिए विजय हॉस्पिटल से संपर्क करें 01493796907 और 8529879031।
2: क्या कर रही है?
3: ऑनलाइन बुकिंग देख रही हूँ, जयपुर जाना है।
2: फिर से? अभी तो गई थी।
3: हाँ, फिर से जाना है।
2: तू अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती?
3: गाड़ी नॉट इन बजट।
2: अरे गांधी मोटर्स है ना?
3: गांधी मोटर्स?
2: हाँ गांधी मोटर्स। गांधी मोटर्स कार सेल और परचेज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ बहुत अच्छी कीमत पे मिलती हैं।
3: तो कब चलें?
2: अरे इसमें सोचना कैसा, अभी चलना। गाड़ियों के सेल और परचेज के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा पता है शॉप नंबर S16 एवलॉन रॉयल प्लाजा अल्बर बाईपास रोड भिवाड़ी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9785980000 या फिर 8740000144 पर।
5: एक बेहतर कल के लिए, बेहतर मजबूती के लिए, बेहतर बचत के लिए यूज करें SBF रैपिड 550D TMT।
6: मजबूत निर्माण सदा के लिए।
7: मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए एक ऐसा स्कूल जो ICSE से एफिलेटेड हो।
8: भिवाड़ी में है एक मात्र ऐसा स्कूल SPS ग्लोबल स्कूल, जिसके बच्चों ने ICSE 10th की बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट के साथ साथ राज्य स्तर पर कराटे स्केटिंग आदि प्रतियोगिताओं में भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ शिक्षा से बच्चों का बौद्धिक विकास और खेल कूद से शारीरिक विकास, डिसिप्लिन और समय समय पर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यहाँ है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, AC क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, बेस्ट टीचर की फैसिलिटी।
7: SPS ग्लोबल स्कूल नियर कैपिटल मॉल भिवाड़ी। आज ही विजिट करें या कॉल करें 9950888330।
9: अब भिलवाड़ी के शिवोहम हॉस्पिटल में पाएं एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं। यहां 25 बेड से लेस इंडोर, 6 बेड से लेस ICU, 2 बड़े ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब तथा अत्याधुनिक एक्सरे मशीनों के द्वारा एक्सरे सुविधा, तकनीकी मशीनों द्वारा जाँच, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, सभी कैशलेस TPA सुविधाओं के साथ 14 साल से कम आयु के बच्चियों के लिए निशुल्क परामर्श, गायनेकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जैसे अनुभवी डॉक्टर से परामर्श सुविधा, जो कि पिछले 8 सालों से भिवाड़ी में निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। शिवोहम हॉस्पिटल B4 भगत सिंह कॉलोनी पुराने RTO ऑफिस के पास भिवाड़ी। संपर्क 9799996778।
10: अरे कहाँ जा रही हो मुन्नी की शादी की ज्वेलरी लेने के लिए?
11: धारूहेड़ा श्री श्याम ज्वेलर्स।
10: अच्छा श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा ही क्यों?
11: श्री श्याम ज्वेलर्स धारूहेड़ा के पास है सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के नए और लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी BIS 6 अंकों वाला हॉलमार्क HUID। और तो और उनकी ज्वेलरी को भारत सरकार द्वारा चलाए गए BIS केयर ऐप के वेरीफाई हॉलमार्क फीचर से आभूषणों की शुद्धता का भी प्रमाण देख सकते हैं और अपने नए और पुराने सोने चांदी के गहनों की शुद्धता भी चेक कर सकते हैं गोल्ड टेस्टिंग मशीन की मदद से 9812018600।
12: भिवाड़ी का पहला ISO और NABH सर्टिफाइड श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट OPD, 10 बेड का ICU, सबसे बड़ा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 50 बेड का इंडोर, 24 आवर्स एम्बुलेंस, फार्मेसी और इमरजेंसी सेवाएं तथा लैब, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं से लैस श्री कृष्णा हॉस्पिटल अधिकांश मल्टीनेशनल कंपनियों के मेडिकल कंसल्टेंसी एवं कैशलेस उपचार का एकमात्र सेंटर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल B14849 भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी 8529113916734001391। इस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट और फिजिशियन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।
13: आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।